0: ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
1: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
2: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीस डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
3: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
4: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
4: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah. NDTV stands completely engaged with Karnataka.
5: High rate, check the audio.
4: Let's do it.
6: Breaking stories, we're jumping straight into it.
4: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
7: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
4: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling. For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
7: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
4: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
8: They led. They redefined the business conversation. Now, India Inc.'s finest take center stage. Who will win the NDTV Profit Business Leadership Awards? 26 July on the NDTV Network.
9: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
10: Today, young people marched towards Parliament. In fact, people across age groups attempted to march towards Parliament. They knew the police were waiting. They came anyway. The CJP may have organized the mobilization, but the extraordinary scale of the response, that tells us this anger is much bigger than any one organization. The NEET trial, the CBSE controversy, questions over paper leaks, examination security. Yesterday, this generation showed the government it has the numbers to demand answers. And now, the Delhi police has registered an FIR over yesterday's violence in Connaught Place, alleging vandalism of police vehicles and stone pelting.
11: Welcome back. We come to you from right outside the parliament. This is Vijay Chowk. It's drizzling quite a bit here. The monsoon session has begun on probably a very stormy note. What was happening outside the parliament yesterday also has set in some ways the tone for what's likely to happen inside the parliament. But when it comes to the NDA parliamentary party meeting is underway. In fact, what I hear is it's just gotten over. The Prime Minister has spoken. And remember, this is an important NDA meeting, parliamentary meeting, because this is for the first time that probably a very large crossing over of MPs has happened from opposition benches to treasury benches. Several MPs, almost 37 MPs, have crossed over from several opposition parties, including Aam Aadmi Party, TMC, most importantly, because now the rebel MPs have formed this another group called NCPI. You also have Shiv Sena, UBT MPs joining Shiv Sena. And of course, you have these MPs joining the NDA-related parties. And this probably is a shot in the arm for the NDA. At the same time, it's also looking at a fractured opposition. The DMK and the Congress have not been on talking terms since Tamil Nadu elections, ever since the Congress party.
12: Tuesday ko jo milna hota hai, aaj sab mila aur Pradhan Mantri ji ne sabko mark darshan bhi diya hai. Sabse pehle, aaj Mangal Milan mein jo naye Rajya Sabha sadasya chun ke aaye hain, उनका भी हमने जिक्र किया, उनको हमने शुभकामनाएं दी कि वो अच्छा काम करे संसद में. आदरणीय नितिन नवीन जी भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा सदस्य बनकर के आज पहले बार मीटिंग में भाग लिया. मीटिंग बहुत अच्छी रही. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस मंगल मिलन में एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी को संबोधित किया, मार्गदर्शन दिया है. सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश ने इस कुछ महीने के अंदर में जो सफलता प्राप्त किए हैं उनके बारे में जानकारी दिया है और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं उसका भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। किसी भी देश के साथ किसी भी गुट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है जो लोग दोषी पाए गए हैं जिसको अरेस्ट किया गया है उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है पाप काम किया है उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए सजा भी दे दोषियों

0: हो गया। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम कहाँ जाए? और वो भी स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं, हर कोने कोने से आकर अपने बात को रखने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते थे कि वो नड्डा साहब से क्या बात किए। हम ये भी जानना चाहते थे उसके बाद में इनकी जो इंटरनल होम मिनिस्टर ने बुला के इंटरनल मीटिंग की, उसमें आपने क्या किया? क्योंकि ये जनता को बताना जरूरी है और पूरे देश के युवकों को भी बताना जरूरी है, स्टूडेंट्स को बताना जरूरी है। इसीलिए हम ये चाहते थे कि इसके ऊपर डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद होम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट करे और दूसरे जो फ्लोर लीडर्स हैं उनको भी बात करने का एक मौका मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने आज सदन में उठाकर इसको जो सारे देश को बताना चाहते थे, उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। डेमोक्रेसी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अजीब दिख रहा है। और मैं 60 साल में ऐसा तरीका जो सरकार ने आज ढूंढा है, ऐसा कभी नहीं देखा। मैं 14 बार असेंबली, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा सब देखा हूं, लेकिन ऐसा नहीं। और हम ये चाहते हैं कि तुम चर्चा करने के लिए मौका दो, हम अपनी बात बताएंगे। क्यों लाठी चार्ज हुआ? क्यों उनको बच्चों को मारा गया? इसके लिए हम पूछने के लिए भी अगर यहाँ फोरम नहीं है तो कहाँ बात करें? और मैं वार्न करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अनार्की क्रिएट करने वाली है। अनार्की क्रिएट करने के लिए सब कर रही है। कोई अपोजिशन, कोई स्टूडेंट्स, कोई अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट या कोई जनता नहीं कर रही है, सरकार खुद उचका रही है कि देश में अनार्की हो और फिर उसको दबाया जाए, लाठी चार्ज करा जाए, मारा जाए और डरा के उनको जेल में रखा जाए। दूसरी बात यह है कि कल भी जो हम बात करना चाहते थे उठाए, उस वक्त भी मौका नहीं दिया, लेकिन हमको जेल के जैसे अंदर रखा गया, बाहर आने नहीं दिया। क्या बात है? अरे पार्लियामेंट के बाहर भी अगर एमपीज नहीं आ सकते तो उनको सुरक्षा नहीं है तो किनको है? तो देश आज एक अराजकता के तरफ चल रही है और मोदी जी, होम मिनिस्टर, इसको कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं और वो अपनी बात सदन में रखना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए ऐसे एटीट्यूड को हम कंडम करते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और पार्टी युवा के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और पार्टी युवाओं के साथ है।
0: सरकार और पार्टी अगर युवाओं के साथ है, क्या बच्चियों के कपड़े फाड़ने के लिए? क्या बच्चों को लाठी मारने के लिए? क्या युवकों को दबाने के लिए और उनको आंसू बहाने के लिए लगाए आप और सुरक्षित रखने के लिए बोल रहे? अरे आपको दूसरों को टॉन्ट मारने के बजाय दूसरी कोई भाषा नहीं आती। हम देखे बहुत से लोग, कोई भी ऐसा नहीं करता। और ये प्राइम मिनिस्टर जी जो है खुद सबको डराने की कोशिश करते हैं, तो हम डरने वाले नहीं। हम जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, युवा है, उनकी आवाज हम उठाते रहेंगे। और इसी के साथ जो राम मंदिर का भी हुआ, उसके बारे में भी नेक्स्ट हम उठाएंगे और देश को बताएंगे। एक तरफ तो चोरी हो रही है, दूसरे तरफ सप्रेशन हो रहा है और हमारे जो बातें हैं उसको खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद।
2: थैंक यू।
0: धन्यवाद।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: धन्यवाद। मिनिस्टर के स्टेटमेंट की मांग आप कर रहे हैं।
2: थैंक यू वेरी मच।
3: Mallikarjun Kharge, the leader of the opposition in the Rajya Sabha, and Congress president issuing an important statement talking to media people, saying that He's claiming that the

0: सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने यह अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का, हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त है, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के सब होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है।
1: Also, the BJP has posted a video of Prime Minister Narendra Modi stating that the PM is always working to secure the future of the country's children.
2: ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सकें, इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूं आपके बच्चों के भविष्य के।
1: The Delhi police has launched a probe into the violence during the Sansad Chalo protest. Delhi police has registered FIRs against unknown miscreants for attacking police personnel and vandalizing police vans. The miscreants vandalized police vehicles and pelted stones at a police team in Connaught Place. The protesters have been booked under the charges of criminal conspiracy, Arms Act provision and endangering human life. Meanwhile, Union Minister J.P. Nadda said that talks were productive with the protesters. Yesterday, the representatives of this protest met Union Minister J.P. Nadda and submitted a letter with their demands. Also, activist Sonam Wangchuk has said he will continue his fast till youth leaders or Wangchuk himself do not meet the MPs.
3: सर सीजीपी से मुलाकात कैसी रही आपकी?
4: ठीक रही, हमेशा ठीक रहती है।
3: कुछ एश्योरेंस सर?
5: दिस इज अ मूवमेंट दैट हैज कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर नेशन। वी हैव पीपल हियर फ्रॉम द होल कंट्री एंड देर आर मोर देन 25 लाख यूथ अक्रॉस 5 किलोमीटर रेडियस। The police and the government are only resorting to lies to control the situation or misuse of power. They are just doing lathi charge or misusing their power or using lies.
1: Akhil now joins me live from the national capital. Akhil, some serious charges against the miscreants, but I think the challenge here is, and this is a very basic challenge, Akhil, how will the cops differentiate between who they call miscreants and who they call protesters who are there protesting for what they believe in, which is a better educational system? That remains a challenge.
6: That's right, Vedika. If you see, we have been speaking to some of the senior officials from Delhi Police. And if you just go by the version that we have got from the Rapid Action Force senior officials, they have said that there were some anti-national elements that became the part of this very protest. And they tried to use it as a tool, in which what we have seen that several policemen have got injured. If you see, the data is approximately more than 118 police personnel getting injured in this very unfortunate incident that that has basically we have seen in the national capital yesterday. And not only that, right now what we have seen that over 70 individuals

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर ऑयल में ही खाना बनाती थी आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: B-Mark, the mustard specialist since 1933.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: This is India Inc's Roll of Honor, recognizing the leaders shaping India's growth story, where ambition, enterprise and excellence meet. In the presence of the Finance Minister, Nirmala Sitharaman. NDTV Profit Business Leadership Awards, 26th July, on the NDTV Network.
10: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
11: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal, on Saturday.
10: The show that sets the prime time agenda.
11: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
10: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम वीकडेज एट 4 पीएम
2: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100
3: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
4: What we are sitting inside is a Joby powered air tank.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
11: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड ऑल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
12: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
13: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
14: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now.

0: a concrete discussion on what all happened yesterday. And we also want Home Minister Amit Shah to speak up on this entire matter. We have also seen just few minutes back pictures of JP Nadda holding meeting with the doctors of the RML, who are apprising him about the situation and the condition of all those students hospitalized here.
1: All right, Tejshri, thanks for joining me live. Tejshri outside the RML hospital, they're bringing you the latest. Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi meeting with the protesters inside the hospital. Earlier in the day, you also had JP Nadda, who was still there, meeting with the injured protesters. Arvind Kejriwal also visiting the injured protesters at the hospital today. Now, protests over paper leaks have dominated day two of parliament, with the opposition upping the ante against the government. Opposition leaders Rahul Gandhi, the leader of opposition, as well as Akhilesh Yadav, met the Lok Sabha speaker earlier today. They are demanding that the protest that was held in Delhi yesterday and the alleged crackdown on the protests be debated in the House. The opposition has accused the centre of ignoring students' concerns. The government, on the other hand, has assured that the welfare of students and their interests are top priority for the government.
2: Issue students ki hai, youth ke future ki hai, aur ye jo kiya ja raha hai, logon ko mara ja raha hai, pita ja raha hai, this is completely un-Indian. Modi ji has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ye jo yuva hain, ye education system ke bare mein, testing system ke bare mein protest kar rahe hain. Pura desh janta hai ki education system, testing system is broken.
3: और लाठी चार्ज हुआ है और टीयर गैसेस छोड़े हैं और सभी स्टूडेंट्स को उनको मारपीट करके बहुत से लोग हॉस्पिटल में भी है. तो जो अन्याय और अत्याचार और जो एक उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था और हमने उठ के बात करने के लिए तैयार हो गए. लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया.
4: नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए, तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो, इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया.
5: एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता. ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है. आज युवा बहुत ही दुखी है. एक्चुअली ये जो आप नाराज़गी देख रहे हैं, एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है. और इनकी सिंपल सी चीज़ है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज़ आते हैं. आप ना तो यहाँ पर आप चर्चा करना चाहते हैं, ना अपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं. ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं. ये तो मतलब ये सदन ही उनका है. हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ये रखा है.
6: अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज कराया जाता है. तो कहीं ना कहीं ये बच्चे ये बताने आए थे संसद भवन तक. उनका मार्च इसीलिए था कि वो सरकार को बताना चाहते थे कि आपका सिस्टम एक तरीके से बीमार पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, उनके हितों के बारे में नहीं सोच रहा है.

0: और वहीं उन मासूम बच्चों को इतनी लाठियां खानी पड़ी, इतने डंडे खाने पड़े, और जो अत्याचार उनके साथ हुआ, बेटियों के कपड़े फाड़े गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, सीधे आप उनके लोअर लाइक बॉडी में प्रहार करने से, जो सिस्टर जो कानून कहता है कि आपको पैरों पे मारना चाहिए, मारना ही अगर कोई उग्र हो रहा है, लेकिन आपने उनकी छाती में डंडे फाड़े, उनके सर फोड़ दिए। तो मैं समझती हूँ इतनी निर्मम सरकार है ये, और इनके इतना बच्चों ने आंसू बहाए हैं, हम पूरा सोशल मीडिया आज बच्चों के आंसुओं से भरा हुआ है।
1: और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के सर पे टांके आए हैं, पैरों की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है या टांके आए हैं। कई बच्चे जो दूर दूर से चल करके आए हैं, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज होकर करके आए थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, और यहां तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पर जो वीडियोस आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था, लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे।
2: ये कल जो कुछ भी हुआ है वो कंसिस्टेंट बिहेवियर है सरकार का। जब लॉयर्स का प्रोटेस्ट हुआ इसी तरीके से मिसमैनेजमेंट किया गया, जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ लाल किले में इस तरह से मिसमैनेजमेंट किया गया, CAA के प्रोटेस्ट में आप लोग भूल रहे हैं वो उस विजुअल्स को चलाइए, जब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में घुसकर लाइब्रेरी में कैंटीन में स्टूडेंट्स को मारा गया, एक लड़के की आँख चले गई, इतने हफ्तों से चल रहा है, आप बातचीत कल क्यों करते हैं? आप तो पहले से बातचीत करना चाहिए था उन स्टूडेंट से, और कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है। और जो विजुअल सामने आए हैं वो आप खुद देख लीजिए, हमको बोलने की क्या जरूरत है?
3: सी नाउ द गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड दैट दे कैन नॉट सप्रेस दिस प्रोटेस्ट और एजिटेशन, एंड व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे, व्हाट द कैपिटल सिटी हैज विटनेस्ड यस्टरडे, इट वाज रेजोनेटिंग विद द डिसकंटेंट, एंड इट इज एक्चुअली द डिसकंटेंट दैट इज ब्रूइंग एट द ग्राउंड लेवल. The writing on the wall is very clear for this government. Unless they act, this protest will spread across the country.
4: See, we know that like last few days students has been protesting in Delhi, and today all the students has been severely like attacked by the Delhi police, and we strongly condemn the act of Delhi police on this on the attack on the students. And apart from that, like the central government should call the students. They have already called, but it is too late. But they have to talk to the students and fulfill their request, because it is a genuine request. It is not only theirs, but it is a request of all over India, because like whatever they have asked, is a very genuine request, and definitely central government should fulfill the request and make the protest inform the students and get the protest resolved as soon as possible.
5: ज़्यादा आप लोग भी अंदर और गेट्स भी बंद कर दिए गए थे, और सब जो पार्लियामेंट थे वो भी अंदर कैद हो गए, और हमें जब एक्चुअल भी हुआ हम कहीं मूव नहीं कर पाए थे. आप लोगों ने देखा किस तरह से मॉब जो है इस तरह से जो है अटैक करता हुआ अंदर हम पे भी. कल एक वक्त तो ये था हम सब कहेंगे कि कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे, तो लेकिन मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करती हूँ, उन्होंने जो है हमारे बीच में शील्ड बनकर खुद पर जो है पथराव के नीचे या चोटें खाई, लेकिन जनमानस को कोई हानि नहीं होने दी. नहीं तो
6: अनशन पे बैठे हैं, आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, कोई उनसे जाके इंगेज नहीं करता. जब सब इकट्ठे होके बच्चे यहाँ पे आते तो किस बुरी तरह से उनको मारा पीटा जा रहा है, किसी की टांग तोड़ दी, किसी के सर फोड़ दिया. वो डंडे लेके भी नहीं आए थे, वो यहाँ पे मतलब बच्चे हैरान है, ये छोटे 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं जो हैरान है कि हमारे साथ ये क्या हो गया. तो बहुत दुख होता है कि संवेदनशील इशू है उसको एक तरीके से आपको सेंसिटिविटी के साथ आप ऐसे ही आप इंस्टिगेट करेंगे, इंसाइट करेंगे और दबाएंगे उनकी मुश्किलों. आप पार्लियामेंट में भी नहीं उठाने देंगे, ना बच्चे उठा सकें ना हम पार्लियामेंटेरियंस उठा सकें, तो इस तरीके से मुद्दों को दबा के कैसे काम चलेगा?
7: मेरा मानना है कि न प्रोटेस्टर जो है वो देशद्रोही हैं और न पुलिस जो है वो दुश्मन है, लेकिन जो है वो पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों का किसी को पुर्जा नहीं बनने देना चाहिए। अब जो है वो पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों का अगर कोई टूल बनाने की उन्हें कोशिश करेगा और उन्हें जो है वो जंतर मंतर में झोंक करके खुद छू मंतर हो जाएगा, तो इससे भी होशियार रहने की ज़रूरत है। और इस तरह के जो प्रयोग हैं ये कोई नए नहीं है, ये लगातार इस तरह के प्रयोग जो है पिटे हुए पॉलिटिकल पार्टियों के इस तरह के प्रयोग चलते रहे हैं। इस तरह की पिटी हुई पॉलिटिकल पार्टियां कभी खुद सामने आती हैं और कभी जो है अपने प्राक्सी पार्टनर्स को लेकर के सामने आती हैं। ये इनका रिवाज और मिजाज बन गया है।
8: Aishwarya, my colleague joins me live. Aishwarya, there is to be a march by the opposition MPs to Seva Tirth. Has that started? What are the details you have for us? Also, at this point, it's very important to understand if there's an attempt or talks or back channel talks at this point to end the logjam in Parliament, day two, no business conducted.
9: The fresh update that is coming in from the opposition camp is that the leaders have decided to submit a memorandum to the President of India, rather marching towards the Prime Minister's office. And because President of India is not in the nation, it seems like the protest march will be delayed further. And whenever President will be back, the march from the Parliament to President will continue until and unless the demands of the opposition does not get fulfilled, as being presented in front of the Lok Sabha Speaker this morning by the opposition camp, the entire delegation that was led by Mr. Rahul Gandhi. Now, it is the government sources on the other side stating that yes, the talks are still on between the students and the government. The channels have been opened up. There will be next round of talks that is possible at the end of the day as well. Perhaps Home Minister Amit Shah yesterday conducted an internal meeting called in Dharmendra Pradhan, Piyush Goyal, Kiran Rijiju. And that meeting lasted for almost 4 hours, in which Home Minister Amit Shah took the stock of the situation. JP Nadda was told to speak to the CJP delegation, and the memorandum was later submitted to the government. The government had stated that let us have some internal deliberations on the demands that have been put forward and they will get back. Perhaps the government on their side has been stating that major reforms have taken place in the entire education system of the country. The NEET examination, the paper leak scandal that erupted, 13 people got arrested earlier, the investigation has taken place, the re-examinations were done, and the entire system is in place. Whatever there were wrongdoings, there has been strict punishment that will be given to those who have been found guilty or are indulged in the entire scam. So certainly government is defending on their own points of stating that how they have taken prior steps, but the opposition party is clearly demanding the resignation, accountability in the system, and more transparency towards the education system to the students as well.
8: So the big takeaway from this conversation is that opposition MPs will be submitting a memorandum to the President of India. Currently, the President is out of the country and is in North Macedonia. That's the latest that we have for you. Aishwarya, thanks for joining me live. Now, in a key NDA strategy meeting this morning, the Prime Minister, Narendra Modi, gave a strong message of assurance for the students. The Prime Minister declared that there is going to be zero tolerance towards paper leaks. He assured the NDA MPs that his government is fully committed to protecting the future of India's youth by ensuring fair, transparent examinations. At the NDA Parliamentary Party's Mangal Milan meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the Prime Minister highlighted the government's response. All right, so you have the union minister there, and these are live visuals that we're getting to you of the union minister meeting with the injured students at the RML hospital. Let's just dip in to see if we can pick up any audio. All right, there doesn't seem to be an audio there, but that's the union minister who is meeting with the students at RML hospital. He's also met with the medical representatives at the hospital. He's held a meeting with them, according to Tej Shree. There are several students there who have been injured and other protesters as well. At the same time, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi also at the hospital to visit the injured protesters. You had Arvind Kejriwal earlier today also meeting with them. JP Nadda is the man who seems to have been appointed to speak with the representatives of the protest as well. You had him meeting with representatives of the CJP yesterday, where a written letter was then handed over to JP Nadda, according to the

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
10: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
11: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
12: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
13: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
14: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: nominees are extremely close together in terms of what they've done.
1: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
2: It's also important that how they are reshaping the industries.
3: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
4: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
5: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
6: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम Weekdays at 4 p.m.

0: और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया।
1: भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पर और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संगी साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है।
2: दिल्ली में जब कभी भी जनता अपने तकालीफ का इजहार करने के लिए, चाहे वो फार्मर एजुकेशन हो, चाहे वो लॉयर्स हो या CAA का प्रोटेस्ट हो या ये हो, हम ये बार बार देख रहे हैं कि यहाँ पर सरकार इनसे डायलॉग नहीं करती, बातचीत नहीं करना चाहती और नतीजा ही निकलता है कि पुलिस के जरिए से उन पर मारपीट होती है, तशद्दुद होता है, वायलेंस होता है। ये बड़ी ही तकलीफदेह बात है और आप मेरी बात को भरोसा मत करिए, जो वीडियोज और विजुअल जो सारी दुनिया देख रही है तो बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत हो रहा है।
3: ज़्यादा आप लोग भी अंदर आप लोगों सब लोग कितना घबरा गए थे और गेट्स भी बंद कर दिए गए थे और सब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी अंदर कैद हो गए और हमें जब एडजर्न भी हुआ हम कहीं मूव नहीं कर पाए थे। आप लोगों ने देखा किस तरह से मॉब जो है किस तरह से जो है अटैक करता हुआ अंदर हम पे भी। कल एक वक्त तो ये था हम सब कहेंगे कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे, तो लेकिन मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करती हूँ, उन्होंने जो है हमारे बीच में शील्ड बनकर खुद पर जो है पथराव नहीं दी या चोटें खाई लेकिन जनमानस को कोई हानि नहीं होने दी। नहीं तो
4: अनशन पे बैठे हैं, आवाज़ नहीं सुनी जा रही, कोई उनसे जाके इंगेज नहीं करता। जब सब इकट्ठे होके बच्चे यहाँ पे आते तो किस बुरी तरह से उनको मारा पीटा जा रहा है, किसी की टांग तोड़ दी, किसी के सर फोड़ दिया। वो डंडे लेके भी नहीं आए थे वो यहाँ पे, मतलब बच्चे हैरान है, ये छोटे 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं जो हैरान है कि हमारे साथ ये क्या हो गया। तो बहुत दुख होता है कि संवेदनशील इशू है उसको एक तरीके से आपको सेंसिटिविटी के साथ आप ऐसे ही आप इंस्टिगेट करेंगे, इंसाइट करेंगे और दबाएंगे उनकी मुश्किलों, आप पार्लियामेंट में भी नहीं उठाने देंगे, ना बच्चे उठा सके ना हम पार्लियामेंटेरियंस उठा सके, तो इस तरीके से मुद्दों को दबा के कैसे काम चलेगा।
5: Now staying with the protests and the demands of the students and NEET aspirants, in a key NDA strategy meeting this morning, Prime Minister Narendra Modi gave a strong message of assurance for the students. Prime Minister declared that there is zero tolerance towards paper leaks. He assured NDA MPs that his government is fully committed to protecting the future of India's youth by ensuring fair and transparent examinations. At the NDA parliamentary party's Mangal Milan meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the Prime Minister highlighted the government's response to recent paper leaks incidents, including conducting re-examinations where necessary. The Prime Minister also stressed that robust measures are being put in place to prevent such incidents in the future and called for the strictest possible punishment for those involved in paper leak rackets. The message from the government is very clear. No compromise on exam integrity or the aspirations of the students, and comes just hours after massive violence was witnessed in India's national capital after the NEET aspirants and students protested outside the parliament. Here is what Kiran Rijiju had to say.
0: NEET ke exam ke bare mein adarniya Pradhan Mantri ji ne kaha hai ki jab paper leak ka khabar aaye turant sarkar ne karwai kiya और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है

0: और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का, हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है।
1: You heard Kiran Rijiju there, but the BJP has posted a video of Prime Minister Narendra Modi stating that the Prime Minister is always working to secure the future of the country's children. Here's that video.
2: ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सके, इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूं आपके बच्चों के भविष्य के।
1: Now many celebrities have extended their support for students protesting over NEET leak issue. Singer Diljit Dosanjh appealed to the authorities to listen to the students' demands, saying that their voices deserve to be heard. Actor Ritesh Deshmukh joined Janelia Deshmukh, described the youth as the heartbeat of India's democracy, and stressed that aspirations cannot be ignored. While actor Bhumi Pednekar condemned violence from all sides, saying that it can never be a solution and calling for a peaceful resolution. Veteran actor Shivana Azmi, who had participated in Sansad Chalo protest, also extended her support, urging government to hear the students. Now, government standoff 2.0 loading. Farmers are marching towards Delhi to protest against the proposed India versus US trade deal. Ahead of the march, the authorities have sealed the Shambhu border and tightened security arrangements in the area. Farmers have raised concerns over the impact of the deal on Indian agriculture and are demanding that their voices be heard before any agreement is finalized. Their key demands include no harmful trade concessions, protection of MSP and farm income, safeguarding domestic agricultural markets, and ensuring fair terms for farmers. Meanwhile, government has assured that the trade deal will help farmers and government will always prioritize interest of the farmers.
0: फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। किसी भी देश के साथ, किसी भी गुट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
3: ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਧੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੱਪ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੀ ਆ?
4: It's lovely morning here out here in Punjab. I'm right now reporting from near the Shambhu border, which borders Patiala and Ambala district of Haryana, Patiala of Punjab and Ambala district of Haryana. But what you see behind me doesn't suggest that the situation is going to be as calm as it looks now. The farmers from across the Punjab are now coming towards the Shambhu border. They want to go to Delhi. Actually, they are protesting against the India-US trade deal. The farmer leaders have argued that the proposed agreement between the India-US trade deal extends far beyond the import and export of a handful of commodities. They contend that negotiations could encompass agriculture, dairy, industry,

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: The fact that there is now suddenly a raging debate with regard to ethanol, why is it that it's happening now?
6: E20, madam, has been around for nearly 2 years now. There are 20 crore two-wheelers using E20. There are 20 lakh four-wheelers using E20. But I think the counter information which has been put out that this is

0: party is trying to politicize the entire issue is something that government is not agreeing with. And that's the reason perhaps the government want to send across a message to the students that they are with students, and therefore the reason perhaps all directions possible are being given from the top leadership to the students.
1: All right, the stalemate continues. The protesters continue to protest, but the government says that they're ready for a dialogue to take place. And that's what Aishwarya Jain is keeping a very close watch on. Thanks, Aishwarya, for getting us the latest. Meanwhile, more breaking news coming in regard to the protest itself and the injured. Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi have visited the RML hospital in India's national capital. That's where the 60 protesters and cops have been, in fact, getting the medical treatment after the violence that happened yesterday, meters away from the parliament. Of course, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, along with other senior leaders of the Congress party, have been meeting the injured at the hospital. They did not speak to the media, but certainly this is a message that Rahul Gandhi and the opposition is giving to the students, that they are with them. This comes just minutes after Rahul Gandhi and the opposition leaders met the Lok Sabha speaker, asking him to debate the NEET issue and the protests at Jantar Mantar inside the parliament. Tej Shri Purandare is joining us on this big story. Tej Shri, what's the latest that you're picking up with the opposition onslaught against the government, but also Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi visiting the hospital?
2: Well, it's absolutely. You see, the opposition has upped its ante against the government, against the centre as well. And they have been, you know, relentlessly attacking the government for not taking action on the day when these students came over here and decided to protest and also carry out a march on a day when the parliament would begin. Number one. Number two, if we talk about the developments throughout the day today, then yes, as we have rightly mentioned, Rahul Gandhi along with Priyanka Gandhi and KC Venugopal did visit all those injured students who are hospitalized in RML hospital. And apart from that, also important to notice, Arvind Kejriwal did also a visit to that particular hospital as well. And given the information from Jantar Mantar, what we are understanding as of now is that in all likelihood Sharad Pawar, the NCP chief of SP, is also going to arrive over here in around just 15 to 20 minutes from now. So yes, we are reporting from ground zero, but as far as all these developments are concerned, we have also been seeing that how the political parties are raising several questions. So as to the manner in which the police lathi charge the students, number one, and the opposition is also asking so as to why there was a need to lathi charge. But keeping in mind the police deployment over here, we will also show you the pictures of Jantar Mantar, that how the barricading still remains at the place and how there's a heavy security deployment as well, because yes, there is no call given for march so far, but yes, the protest remains to be there at Jantar Mantar. The supporters are still sitting over there at Jantar Mantar. Yesterday also we saw pictures coming in around 1 a.m. that how the supporters were still sitting over here. And yes, now in all likelihood the other MPs could also come over here to meet all these protesters who are sitting here at the protest site. Back to you.
1: All right, Tej Shri keeping a very close watch on the protest that's happening at Jantar Mantar, but also on the larger politics associated with it. Tej Shri, keep a close watch. We will be tracking that very closely on NDTV. Meanwhile, viewers, while the stir continues on Jantar Mantar, as protesters continue their sit-in over their demands, the opposition leaders are now reaching the hospital where the injured protesters are admitted. From the government side, Union Minister JP Nadda visited the hospital to meet the protesters, whereas from the opposition, there was Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi who met the injured protesters inside the hospital. Meanwhile, the Delhi police has registered FIR against unknown persons for attacks on the cops and vandalizing several police vans in and around Jantar Mantar. At least 5 FIRs have been filed with charges of criminal conspiracy, Arms Act provision and endangering human life. Meanwhile, the Delhi High Court said that Wangchuk, the activist behind the stir, can be shifted to the Medanta Hospital, but the centre said he cannot be discharged without the government doctor's consent. Here are some of the reactions we are picking up.
3: हम बहुत खुश हैं क्योंकि एक रिकॉर्ड टाइम में अखिल सिब्बल और उनकी टीम और बाहुली शर्मा और उनकी टीम ने ये ऑर्डर वो कर पाए और मैं दिल्ली हाई कोर्ट का भी बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने इस मैटर को फेवरेबली डिस्पोज किया क्योंकि इंडिया में एक डेमोक्रेटिक सिटीजन को ये राइट है कि वो चूज़ कर सके उसका चॉइस ऑफ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल और उसकी क्या ट्रीटमेंट है उसको खुद को वो चूज़ कर सकता है और
4: सर
5: सी सर सीजीपी से मुलाकात कैसी रही आपकी?
6: ठीक रही, हमेशा ठीक रहती।
5: कुछ एश्योरेंस सर?
1: Meanwhile, inside the parliament as well, the protests over the Paper Leak have dominated day two of the parliament, with the opposition upping the ante against the Modi government. Opposition leaders, including Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav, met the Lok Sabha speaker earlier today. They are demanding, in fact, that the protest that was held in Delhi yesterday and the alleged crackdown on it be debated inside the Lok Sabha. The opposition has accused the centre of ignoring students' concerns. The government, on the other hand, has assured that students' welfare and interest is its top focus and the priority. These are some of the reactions that we are picking up.
7: Issue students ki hai, youth ke future ki hai, aur ye jo kiya ja raha hai, logon ko mara ja raha hai, pita ja raha hai, this is completely un-Indian. Modi ji has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ye jo yuva hain, ye education system ke bare mein, testing system ke bare mein protest kar rahe hain. Pura desh janta hai ki education system, testing system is broken.
8: नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया।
9: सरकार चलाते गेले कतगुलो डिसिप्लिन मांगते होए। कल के दिल्ली ते आपनारा देखेछेन छात्र युवकदेर उपर कि अत्याचार होयेछे। পার্লামেন্ট থেকে আমি শুনেছি যে প্রধানমন্ত্রী গাড়ি ঘুরিয়ে পালিয়ে গেছে। এখানেও মনে রাখবেন, বাড়াবাড়ি বন্ধ না হলে আমাদের আন্দোলন রাস্তায় আমাদের রাস্তা দেখাবে। মনে রাখবেন,
10: যে দিল্লি মে হুয়া হ্যায় আজাদি কে বাদ, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब एक बार जश्न हुआ था यहाँ पर, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये गुस्सा दिखाई दिया है। यहाँ पर जहाँ सब कुछ इंतजाम सरकार का फेल हो गया, सरकार फेल हुई कब? जब उन्होंने नीट की परीक्षा की, नीट में चीट। कोई कल्पना कर सकता है कि इतने महत्वपूर्ण परीक्षा में इस तरह की खिलवाड़ हो जाए, उसको लेकर के गुस्सा है। आपने बातचीत बाद में भी की, ये बातचीत आप पहले भी तो कर सकते थे, आश्वासन पहले भी दे सकते थे। देश और युवा सरकार से नाराज है, वो दिल्ली में दिखाई दिया है।
11: बहुत ही ज्यादा आप लोग भी अंदर, आप लोग
12: सब लोग
11: कितना घबरा गए थे और गेट्स भी बंद कर दिए गए थे और सब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी अंदर कैद हो गए और हमें जब एडजर्न भी हुआ हम कहीं मूव नहीं कर पाए थे। आप लोगों ने देखा किस तरह से मॉब जो है किस तरह से जो है अटैक करता हुआ अंदर हम पे भी। कल एक वक्त तो ये था हम सब कहेंगे कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे, तो लेकिन मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करती हूँ, उन्होंने जो है हमारे बीच में शील्ड बनकर खुद पर जो है पथराव नहीं दी या चोटें खाई, लेकिन जनमानस को कोई हानि नहीं होने दी। मैं ये कहूँगी
13: लाठी चार्ज हुआ है और टीयर गैसेस छोड़े हैं और सभी स्टूडेंट्स को उनको मारपीट करके बहुत से लोग हॉस्पिटल में भी है, तो जो अन्याय और अत्याचार और जो एक उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था।
4: देखिए, प्रदर्शन छात्रों का था, छात्र हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य है, इनके साथ इस तरह का बर्ताव करना सही नहीं है।
12: अरुण जी, बच्चों को चोट भी आई आप लोग मिले?
4: बच्चों को चोट भी बहुत आई है, अभी जंतर मंतर पे मुझे पता चला है काफी बच्चे बैठे हैं, किसी को प्लास्टर है, मैं भी जंतर मंतर जाऊंगा उनसे मिलने के लिए।
14: एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता, ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है, एक्चुअली ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं ये एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। और इनकी सिंपल सी चीज़ है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज़ आते हैं, आप ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है, हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है, उन्होंने ये रखा है।
15: अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज कराया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे ये बताने आए थे संसद भवन तक, उनका मार्च इसीलिए था कि वो सरकार को बताना चाहते थे कि आपका सिस्टम एक तरीके से बीमार पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, उनके हितों के बारे में नहीं सोच रहा है। और वहीं उन मासूम बच्चों को इतनी लाठियां खानी पड़ी, इतने डंडे खाने पड़े, और जो अत्याचार उनके साथ हुआ, बेटियों के कपड़े फाड़े गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, सीधे आप उनके लोअर लाइक बॉडी में प्रहार करने से, जो सिस्टर जो कानून कहता है कि आपको पैरों पर मारना चाहिए, मारना ही अगर कोई उग्र हो रहा है, लेकिन आपने उनकी छाती में डंडे फाड़े, उनके सर फोड़ दिए। तो मैं समझती हूँ इतनी निर्मम सरकार है ये, और इनके इतना बच्चों ने आंसू बहाए हैं, हम पूरा सोशल मीडिया आज बच्चों के आंसुओं से भरा हुआ है।
16: दिल्ली में जब कभी भी जनता अपने तकालीफ का इजहार करने के लिए, चाहे वो फार्मर एजुकेशन हो, चाहे वो लॉयर्स हो, SCAA का प्रोटेस्ट हो या ये हो, हम ये बार बार देख रहे हैं कि यहाँ पर सरकार इनसे डायलॉग नहीं कर रही, बातचीत नहीं करना चाहती, और नतीजा ही निकलता है कि पुलिस के जरिए से उन पर मारपीट होती है, तशद्दुद होता है, वायलेंस होता है। ये बड़ी ही तकलीफ देह बात है, और आप मेरी बात पर भरोसा मत करिए, जो वीडियोज और विजुअल जो सारी दुनिया देख रही है, तो बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत हो रहा है।
17: सी नाउ द गवर्नमेंट हैज रियलाइज दैट दे कैनॉट सप्रेस दिस प्रोटेस्ट और एजिटेशन, एंड व्हाट हैज happened yesterday, what the capital city has witnessed yesterday, it was resonating with the discontent, and it is actually the discontent that is brewing at the ground level. The writing on the wall is very clear for this government. Unless they act, this protest will spread across the country.
18: We know that like last few days students has been protesting in Delhi, and today all the students has been severely like attacked by the Delhi police, and we strongly condemn the act of Delhi police on this on the attack on the students. And apart from that, like the central government should call the students, they have already called but it is too late, but they have to talk to the students and fulfill their request, because it is a genuine request. It is not only theirs, but it is a request of all over India, because like whatever they have asked is a very genuine request, and definitely central government should fulfill the request and make the protest inform the students and make the protest resolved as soon as possible.
1: Now, even as we stay with the protests that are happening in the national capital, in a key NDA strategy meeting this morning, Prime Minister Narendra Modi gave a strong message of assurance for the students. Prime Minister declared that there is zero tolerance towards paper leaks. He assured NDA MPs that his government is fully committed to protecting the future of India's youth by ensuring fair and transparent examinations At the NDA Parliamentary Party's Mangal Milan meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the Prime Minister highlighted the government's response to recent paper leak incidents, including conducting re-examinations where necessary. The Prime Minister also stressed that robust measures are being put in place to prevent such incidents in the future and called for the strictest possible punishment for those involved in paper leak rackets. The message from the government is clear. No compromise on exam integrity or the aspirations of the students, even as the protests continue at Jantar Mantar, seeking accountability and transparency. Here is what the Prime Minister said, and this is Kiran Rijiju.
8: नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया तो दोबारा इस तरह का परलीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है जो लोग दोषी पाए गए हैं जिसको अरेस्ट किया गया है उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है पाप काम किया है उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है
1: Meanwhile, the BJP has posted a video of Prime Minister Narendra Modi stating that the Prime Minister is always working to secure the future of the country's children. Take a look.
19: ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सकें, इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूँ।
1: Meanwhile, many celebrities have extended their support for students protesting over the NEET leak issue. Singer Diljit Dosanjh appealed to the authorities to listen to the students' demands, saying that their voices deserve to be heard. Actor Ritesh Deshmukh joined Janela Deshmukh, describing the youth as the heartbeat of India's democracy and stressed that their aspirations cannot be ignored. While actor Bhumi Pednekar condemned violence from all sides, saying that it can never be the solution and calling for a peaceful resolution. Veteran actor Shabana Azmi, who had participated in Sansad Chalo protest, also extended her support, urging the government to hear the students. And there is some breaking news coming in. This is the ethanol related discussion that will happen inside the parliament on 23rd July. Ethanol will be discussed inside the parliamentary committee meeting of the Committee on Transport, Tourism and Culture. The meeting will be held on Thursday, the 23rd of July. The topic for the committee meeting will be review of vehicle type approval, conformity testing and certification standards and consumer grievance redressal mechanism in the context of the evolving automotive fuel speculations that will be discussed in this particular meeting. For this, concerned stakeholders, including the Secretary of the Ministry of Road Transport and Highways, as well as the representatives of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, apart from the OMCs, SIAM, ARAI, ACMA and the ICAT, will be in fact called. That's the parliamentary panel discussion slated for July 23rd amid the controversy around ethanol and a lot of social media rumors and speculations as well. Akhilesh Sharma is breaking these details on NDTV. Akhilesh, what's the latest that you're picking up on this very critical and important parliamentary committee meeting?
20: Well, it's very important matter as far as the petroleum products are concerned. The company does not specify that this ending, but the sources have indicated to us that this is the topic on which the concerned stakeholders are called parliamentary committee.
1: All right, there seems to be some technical error, but the big development coming at this hour, the Parliamentary Committee on Transport Petroleum Ministry would be discussing the ethanol issue, blending issue on the 23rd of July inside the Parliament. And viewers, that's all we have here on NDTV, but news and updates will continue on the other side. Keep watching.
21: The fact that there is now suddenly a raging debate with regard to ethanol, why is it that it's happening now?
22: E20, madam, has been around for nearly 2 years now. There are 20 crore two-wheelers using E20. There are 20 lakh four-wheelers using E20. But I think the counter information which has been put out, that this is not something we've done suddenly, that E20 has been around for at least almost 2 years, that E15 has been around for 3.5 years. And by the way, in the last 18 months or 24 months, there have been no complaints.
23: Yaad hai na maine kya sikhaya tha? Silver ke liye sterling mark, gold ke liye hallmark
24: aur mustard oil ke liye sirf P mark.
25: Is baar to maa se bhi behtar bana.
26: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
27: Kuch to baat hai is dil mein.
28: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani. Are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.
29: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind. I pause. I reflect. I dig. Until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
30: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
31: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
32: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
33: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
34: It's also important that how they are reshaping the industries.
35: We've got a fantastic jury, and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
30: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
36: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
37: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
36: अरे मेरे राजा।
38: सबका राजा आर प्योर मसाला।
39: The Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
40: The thug you see is Shinde Sena corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy Ramesh Mhatre.
0: We learned that the action has been taken against the thug Neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
1: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko

0: जरा भी शर्म नहीं आती है। आप तो किसने हक दिया हाथ उठाने का?
1: हमको हक हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहाँ भी अन्याय हो,
0: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
1: अगर हमारे कॉर्पोरेशन

0: करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी, आप दिखाते रहिए, पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और कांग्रेस एमपी मणिकम टैगोर मौजूद है। मणिकम जी से बात करेंगे। मणिकम जी बताइए, धरने प्रदर्शन पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम लोग बैठे हैं, सात आरसीआर पर
1: आज सारे एमपी, कांग्रेस का एमपी, सारे लोगों ने, लोकसभा राज्यसभा का एमपी, सारे लोगों ने प्रधानमंत्री का मिलने के लिए आए हैं, और प्रधानमंत्री का मिलने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं,
0: इसलिए आप लोग यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। एक बार ये तस्वीरें फिर दिखाइए,
1: प्रधानमंत्री का घर पे आके प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहे हैं हम लोग, का प्रधानमंत्री का, एमपी का, और लीडर ऑफ अपोजिशन का भी, एमपी लोगों का भी मिलते नहीं है क्या प्रधानमंत्री जी?
0: तो आप चाहते हैं प्रधानमंत्री आपसे बात करें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको फिलहाल 7 RCR से दे रहे हैं। एक ये भी देखिए, यहाँ पर तमाम MPs को अरेस्ट भी किया जा रहा है, ये देखिए तमाम को डिटेन किया जा रहा है, माफ कीजिएगा, हिरासत में लिया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर आप देखिए तमाम जो प्रोटेस्टर्स है यहाँ पर, उनको डिटेन किया जा रहा है। आप देखिए ये कुछ यूथ, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, जो आए हुए हैं, उन्हें ले जाया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर पुलिस बल भी यहाँ पर लाया गया है, देखिए महिला पुलिसकर्मी भी लाए गए यहाँ पर, और ये तस्वीर दिखाइए, सबसे बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं ये। एक तरफ जहाँ राहुल गांधी यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं, राहुल गांधी के साथ तमाम सारे नेता भी धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंटेशन हम देख रहे हैं पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में, पुलिस उनको अंदर बस के धकेल रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम प्रोटेस्टर्स भी अंदर जा रहे हैं। हमारे साथ बाबा भी जुड़ रहे हैं। बाबा देखिए, ऐसी तस्वीरें कभी हमने पहले नहीं देखी यहाँ पर।
2: ये देखिए, ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से छापामार प्रोटेस्ट है, जिसमें किसी को अंदाजा नहीं था कि ये हो जाएगा। सांसदों के साथ जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता आए थे, अब उनको जो है पुलिस वैन में भरा जा रहा है, कोई किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि
0: ये डिसाइडेड था यहाँ से। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्या ये पहले डिसाइडेड था कि इस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा, पहले डिसाइडेड किया गया था, या मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ये रणनीति तैयार?
2: मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मिलने गए थे, तब शायद ये एकाएक जो है वो होगा। इसलिए मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि इतनी उम्र है उनकी, वो खुद इस प्रोटेस्ट में यहाँ पर
0: खुद यहाँ पर बैठे,
2: हाँ यहाँ पे बैठे हुए हैं। उन्होंने अभी हाथ ऊपर करके उन्होंने जो हथकड़ी टाइप लगाई है, वो उन्होंने लगाया था यहाँ पे, और यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो घर है, वो वहाँ से आप पैदल यहाँ पर,
0: आपको ये भी बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे का जो घर है वो यहाँ कुछ ही कदमों की दूरी पर है, और कुछ ही मीटर्स की दूरी पर है, मैं कहूँगी यानी कि 10 राजाजी मार्ग। और ये तस्वीरें देखिए, डेमोक्रेसी ब्लीड्स व्हेन वॉइस व्हेन वॉइस इज स्टॉप्ड व्हेन वॉइस व्हेन दे आर बीटन, इस तरह के जो पोस्टर्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। अब देख रहा ही होगा कि कितनी देर यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है, जो यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए धरने पर, उनको कितनी देर तक यहाँ पर बैठने दिया जाता है, क्योंकि ये सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है। हालांकि यहाँ पर 24 घंटे वो तैनात होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का आवास है, इसके आसपास ना आप ड्रोन से शूट कर सकते हैं, आपको हाई परमिशन की सिक्योरिटी चाहिए रहती है यहाँ पर इस तरह का कोई प्रदर्शन करने के लिए। तो अब देखना ये होगा, सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए ये है कि किस तरह से वो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, और साथ ही साथ वायनाड सांसद प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, और साथ ही साथ तमाम जो पार्टी के नेता भी आए हुए हैं यहाँ पर, पार्टी के MPs आए हुए हैं यहाँ पर, उनको कैसे हटाते हैं, ये काफी चैलेंजिंग होगा। ये हथकड़ी इन्होंने लगाइए, बताइए ये हथकड़ी हाथ पे लगाइए इन्होंने इस तरह से ये प्रोटेस्ट शो करने के लिए। कुछ MP जो है उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। चन्नी से बात, चन्नी साहब है यहाँ पर, और तमाम कांग्रेस चन्नी जी, चरणजीत सिंह,
3: जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है।
4: All right, the latest visuals coming on your screens right now are the massive protest that is underway. Some of the people have been detained by the Delhi police, but this was a spontaneous protest by the Congress party leading the charge against the Modi government. The latest visuals coming on your screens right now, viewers, the entire development is escalating right now, seeking the resignation of the education minister, Dharmendra Pradhan. Tej Shree is joining us live. Tej Shree, over to you. What's the latest that you can tell us?
0: Ji. Well, it's absolutely Aditi. You see, there is a massive ruckus over here, and we'll be again showing you the pictures of this entire area where the protest is underway. However, there have been many MPs, you know, who were just detained or sometimes.

0: Gandhi, but an extremely sensitive zone to hold that protest, Janendra.
1: बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि एमओएस जितेंद्र सिंह की बातचीत चल रही है राहुल गांधी से, लेकिन क्या राहुल गांधी अपना धरना खत्म करेंगे इसको लेकर के अभी स्थिति साफ नहीं है। और यहां तस्वीर जो है वो अगर हम आपको दिखाएं तो बिल्कुल जो प्रधानमंत्री का आवास है उसका जो पिछला गेट है उस गेट के पास ये धरना रहा है कांग्रेस के का, जहां की एमओएस जितेंद्र सिंह मौजूद है फिलहाल बातचीत के लिए, और उसके चारों तरफ एक कड़ा सुरक्षा घेरा जो है वो मौजूद है। और जो जिस राउंड अबाउट पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है वहां ट्रैफिक पूरी तरीके से रोका हुआ है और हर तरफ सिर्फ पुलिस और सुरक्षा के सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं या फिर कांग्रेस के वर्कर नजर आ रहे हैं। फिलहाल एमओएस की लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बातचीत चल रही है, क्या राहुल गांधी अपना धरना खत्म करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ तौर पर जो तेवर हैं कांग्रेस पार्टी के वो अब और कड़े हो गए हैं। पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार ना तो संसद में इस बात पर बात करना चाह रही है इस मुद्दे पर, और छात्रों के ऊपर जिस तरीके का एक्शन हुआ है ऐसे में सरकार को जवाब देना होगा। तो संसद के अंदर कांग्रेस ने और अपोजिशन ने इस पर डिस्कशन की मांग की, और जब डिस्कशन को अलाउ नहीं किया गया तो हंगामा हुआ और पूरे दिन के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई। इसके बाद राहुल हॉस्पिटल गए, वहां पर जो इंजर्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की, और इसके बाद सीधा अपने फेलो एमपीज के साथ कांग्रेस पार्टी के वो पीएम रेजिडेंस के पास में धरने पर बैठ गए हैं। और फिलहाल उनकी बात सुनने, उनसे बातचीत करने के लिए पीएमओ में एमओएस जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं, उनके साथ कुछ अधिकारी भी हैं और फिलहाल वो बातचीत चल रही है। क्या बात बनेगी देखना होगा। मेरे साथ कुछ कांग्रेस के नेता हैं, उनसे बात करते हैं। वेरका साहब, एमओएस पहुंच गए जितेंद्र सिंह बात करने के लिए, क्या आप लोग ये धरना खत्म करेंगे?
2: अरे भैया, पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि भाई हजारों करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, 30 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, उनके जो दोषी हैं आप मोदी जी के चहेते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। देश का किसान, देश का जवान आज सड़कों पे उतरा हुआ है और वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हम उनसे जवाब मांगने के लिए आए हैं और हम ये चाहते हैं कि आज राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तमाम देश के लोग आज यहाँ उपस्थित है और हम उनका इस्तीफा मांगते हैं।
1: बात पहुंचे हैं
0: Jitendra, in moments from now, but there the Congress leaders demanding now not only the education minister's resignation, but now the prime minister. More reactions coming. Take a listen.
3: की मांग है, छात्रों की गूंज है, जो राहुल जी उनकी आवाज उठा रहे हैं। आज बात वही है कि सदन हो या सड़क हो, छात्रों की लड़ाई, छात्रों की आवाज हम हर जगह उठाएंगे।
1: कुमारी शैलजा कह रही है कि प्रधानमंत्री को खुद बात करनी होगी, और इससे साफ है कि जिस तरीके से इस मुद्दे पर समर्थन मिल रहा है और सरकार घिर रही है, कांग्रेस का हौसला बढ़ रहा है और नेता विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पूरा कांग्रेस के तमाम सांसद जो हैं वो पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री आवास के पास धरना देने के लिए। रेणुका चौधरी पहुंची हैं प्रधानमंत्री आवास पर। मैम,
4: देखिए, हमारी मैसेज वही है कि ये बच्चों के लिए न्याय चाहिए हमें और इस्तीफा चाहिए इन लोगों को, करें।
1: एमओएस जितेंद्र सिंह आए हैं बातचीत करने के लिए, क्या बात बनेगी, ये धरना कब तक चलेगा?
4: होम मिनिस्टर क्यों नहीं आ रहे? ये इनकी डिपार्टमेंट है, जितने फौज को उतारे चार टाइप की यूनिफॉर्म पहन के लोग आए हैं, ये तो होम मिनिस्टर का है, तो वो क्यों बिल में घुस के बैठे हैं? आओ बाहर और बात करो।
1: क्या क्या क्या क्या इसी तरीके से एग्रेसिव स्टैंस जो है वो कांग्रेस का?
4: देखिए, हम बहुत शराफत से नोटिस दिए थे पार्लियामेंट में, चलने दिए क्या, बोलने दिए क्या? नहीं ना, तो और क्या चाह रहा है हमारे पास कार्यकर्ता? वर्कर्स गए वहाँ, उनको मारपीट करे, मेंबर पार्लियामेंट गए उनको मारपीट करे, तो हमारे पास और क्या चाह रहा है? आएंगे हम और ये भी पहचानेंगे, तेरे पास दुनिया का ताकत हो, कल तुम आर्मी को भी लाओ, हमारा सीना तैयार है। हम उनके वारिस हैं जो इस देश में वंदे मातरम और इन खिलाफ।
1: बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है रेणुका मैम कांग्रेस को इस इशू पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन सड़क पे धरना दे रहे हैं प्रधानमंत्री के रेजिडेंस।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
6: वी आर ओवर जिमी।
7: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
8: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
11: सबका राजा आर प्योर मसाला।
12: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
13: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? Silver के लिए sterling mark, gold के लिए hallmark
14: और mustard oil के लिए सिर्फ P mark.
15: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
2: P mark, the mustard specialist since 1933, बरसों

0: what we also know, ladies and gentlemen, a lot of pushing and shoving which is going on here. As you can understand, this is an active site of protest. All right, so the police, okay, breaking news, the police is now moving in. There is the police cracking down on the protest site. Congress MP Aujla, who was here, who we earlier spoke to, has been picked up and he's been taken from this very spot. Now taking people away. Ma'am, so sorry. Okay, so the crackdown outside the rear residence of the Prime Minister's office has begun. In fact, at this moment, taking people one by one, there is sudden movement by the security forces. They have come in and they have picked up people. In fact, the police has started. There are these police officials, those who are not in the uniform, like this gentleman who is not in uniform. And they are also pushing and shoving people. So the crackdown, as we speak, has begun. Aap idhar aao, Mursaleen, aap idhar aao, idhar khade ho, aap idhar aao. So the police, in fact, cracking down as we speak, picking up people. All the supporters are being picked up. Aap nikal jai, nikal jai, nikal jai. So the crackdown, ladies and gentlemen, has begun. We were waiting that they will not allow, and now the police aggressively, of course, is moving in. There are some senior police officials, those who are here. How the Congress Party, supporters are being moved from this place. Buses after buses, very quickly moving, people being taken off, and the crackdown has begun. As far as this is concerned, the protests is concerned here. I was just talking to Mr. Aujla, the Congress MP, and right in front of our eyes, he was whisked away. Look at that. I want to show you this. I want to show you this, how now the police, five, six people coming in together and taking the protesters. Rajiv Shukla has also
1: Ankit, we'll go across to Ankit moments from now, but we're showing you how the police officials are now putting the Congress leaders inside that van because they were staging that sit-in, that dharna outside the PM's residence. Police officials there, a short while ago, we also showed you visuals of RAF also being deployed around the PM's residence. Congress leaders now being forcefully picked up and being put inside the truck, inside the police truck. The police scuffle that we're witnessing right now, in which the Congress leaders are now being asked, they're forcefully being picked and put into the truck, is coming at a time when the Congress leader Rahul Gandhi put out that tweet on X, further urging various Congress leaders and netas to come out and stage a sit-in, a dharna outside the PM's residence, which is an extremely sensitive zone, a huge chaos, unprecedented visuals. We are showing you live from outside the PM's residence. But this also comes at a time when the government has given out an outreach, when the MOS, PMO, Dr. Jitendra Singh came out and spoke with Rahul Gandhi. But complete chaos and mayhem there. Congress leaders adamant on not leaving the residence. I want to go back to Aishwarya, who's joining me live from...
2: Staying outside the Prime Minister's residence, including Rahul Gandhi. Just a meanwhile back, it was Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav, who also came in and joined the protest. Supriya Sule also joined in. But now they are taking the Congress MPs from here, and no permission has been given. It is. कल की कल ही संसद के अंदर चर्चा कराने के लिए मान ली गई है. राहुल गांधी अपना पोस्ट बदल रहे हैं. उन्होंने एक ही डिमांड करी थी और कोई नहीं.
3: नहीं, उन्होंने इस्तीफा एक तो मांगा मंत्री का, वो तो बड़ा क्लियर है उसी समय से कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए है, और शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, कल जो अत्याचार हुआ उसके खिलाफ लड़ाई की बात उन्होंने कही, तीनों बातें थी।
2: अब यहाँ से अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर जो आप सांसद देख रहे थे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको अब लेकर पुलिस लेकर जा रही है, डिटेन किया जा रहा है पुलिस के पास, कह रहे हैं कि अब ऑर्डर्स आ चुके हैं कि यहाँ पर किसी भी वक्त यहाँ से अब धरना प्रदर्शन जो कर रहे सांसद हैं उनको हटाया जाए, और इसीलिए मैम अब हटा रहे हैं आप लोगों को यहाँ से, आप शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे।
4: पूरा विपक्ष आज रोड पर बैठ के जो बच्चे हैं स्टूडेंट हैं उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, और एलओपी और सब सीनियर लीडर है, अब उनको पुलिस घसीट रही है, जैसे बच्चों को घसीड़ा है ऐसी तरह आज एमपी एमएलए सभी को घसीड़ कर वो जेल में लेके जा रही है, वो तानाशाही है, लोकशाही नहीं है।
2: तो नाउ यू कैन सी आप लोगों को डिटेन किया जा रहा है,
5: बिल्कुल जबरदस्ती उठा के ले गए हैं सबको, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जबरदस्ती सबको उठा के ले गए हैं, ये दादागिरी।
2: अखिलेश यादव ने भी अभी आप लोगों के समाजवादी पार्टी
5: सब लोग सब साथ में यहाँ आने ही नहीं दे रहे थे, अब जब भीड़ बढ़ी थी इसको सब उठा के ले जा रहे हैं, पुलिस की बर्बरता देखिए।
2: From Bhupesh Baghel over here, who has also been detained, more MPs over here now being taken over by the Delhi Police. यहाँ पर KC Venu Gopal को आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस
6: ये सर आराम से खड़ा हो गया सर प्लीज
2: अब यहाँ से
6: सर पानी पियो पानी
2: की हालत में KC Venu Gopal यहाँ पर नजर नहीं आ रहे स्वास्थ्य क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर KC Venu Gopal को हम तस्वीरों में यहाँ पर साफ तौर पर दिखाएंगे कि किस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको यहाँ से दिल्ली पुलिस लेकर जा रही है, एक एक करके उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। सुप्रिया सुले, अखिलेश यादव कुछ देर पहले, और ये जो जवान हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ से घसीट कर डिटेन कर रहे हैं। यह भी कहा गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से कि अब कोई भी परमिशन यहाँ पर नहीं दी जाएगी, राहुल गांधी की अपील के बाद दिल्ली पुलिस कांग्रेस कमेटी और सेवा दल के कई कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे, और अब उसके बाद यहाँ से दिल्ली पुलिस के जवान अलग अलग बसेस में इन प्रोटेस्टर्स को यहाँ सर हिरासत में ले रहे हैं। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इनको भी यहाँ पर डिटेन किया है, और साफ तौर पर यहाँ पर जो कांग्रेस के सांसद हैं उनका कहना है कि अब यहाँ पर और ज़्यादा उग्र ये प्रदर्शन करने की उनकी अपील थी, उसके बाद लगातार अब यहाँ से सांसदों को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के बड़े ऑफिशियल्स यहाँ पर पहुँचे हैं, और उन लोगों को यह अपील कर रहे हैं कि आप यहाँ से धरना ख़त्म करें क्योंकि ये कोई धरने की जगह नहीं है। देखिए एक और सांसद को किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान अब यहाँ से इस पुलिस की बस में डिटेन कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने इस तरीके से ह्यूमन चेन बनाई हुई है, और अब एक एक करके यहाँ पर सांसदों को लेकर जाया जा रहा है, यानी कि जितेंद्र सिंह के उस बयान के बाद अब सरकार ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी क्योंकि अपनी बात से पलट गए हैं, उन्होंने पहले सिर्फ एक ही बात रखी थी कि पर संसद के अंदर हो, और उस डिस्कशन के बाद अब जब बात सरकार ने मान ली तो राहुल गांधी का कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो मांग रहे हैं। इसी के साथ साथ अब दूसरी ओर हम आपको के कई सांसद के साथ भी आए थे, और इसके बाद यहां पर अब उन सांसदों के साथ भी इसी तरीके से दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनको यहाँ पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये देखिए तस्वीरों में अलग अलग जो सांसद हैं दिल्ली पुलिस से रैपिड एक्शन फोर्स तमाम जो सांसद हैं उनको अब यहाँ से ट्रैक किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। हम थोड़ा आगे जाएंगे और देखेंगे कि

0: क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे अभी भी इस प्रदर्शन में डटे हुए हैं या उनको भी धरना प्रदर्शन की जगह से हटा लिया गया है? हम तस्वीरों में साफ तौर पर यहां पर देख सकते हैं कि इस वक्त राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ ही खड़े हुए हैं और लगातार प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सारे जो सांसद थे वो एक साथ यहाँ पर अभी भी राहुल गांधी के साथ डटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के बड़े आला अधिकारी ये मांग कर रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से आप हटें। हमारे साथ तेजश्री भी हैं। तेजश्री, आप बताएं आपकी तरफ क्या हो रहा है?
1: तस्वीरें हम आपको बताएंगे। बस के अंदर प्रदर्शनकारियों को ले जाया जा रहा है। लगातार एनडीटीवी आपको ये तस्वीरें दे रहा है। प्रदर्शनकारियों को बस के अंदर हिरासत में लिया गया है। उदित राज यहाँ पर कांग्रेस नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिन्हें हिरासत में ले लिया है। और साथ ही साथ ऊपर बस की तस्वीरें दिखाई, देखिए उदित जी, कई सारे नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। आप लोगों को डिटेन कर लिया है यहाँ से?
2: राहुल जी को, प्रियंका जी को और अखिलेश यादव जी, सभी लोग एमपीओ को अरेस्ट किया गया।
3: Right, so at this point, Ram, what we're witnessing is we also have the SP chief Akhilesh Yadav there. We are learning that Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi have also been detained by the police officials after this unauthorized sit-in and dharna by the Congress leaders and the Neta. We also have the RAF being deployed. They are now not only demanding the Pradhan's resignation, but a statement by the Home Minister. I'm going to go across Tejshri, join me from the spot. Tejshri, what's happening there right now? We're learning Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi detained.
1: Well, absolutely. Let me tell you the pictures over here of all these protesters being detained over here. But we are yet to get the pictures of Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi being detained. But yes, because some time back we also saw that SPG was present over here. The Delhi police personnel, the RAF, all present at this spot. The Home Secretary also visited us. Show these visuals over the bus. These protesters are standing over. They are not allowing the bus also to move over here. They are sloganeering. There's a lot of anger among the protesters, among the supporters over here. And apart from that, we'll also show you the pictures as well.
4: स्वयं और मेरे संग केंद्रीय गृह सचिव मौके पर जाकर के इन वरिष्ठ नेताओं से मिले और हम ये सोच करके गए थे, हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, तर्क रखेंगे कि सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वहाँ पहुँचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मरतबा नहीं, दो तीन बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमराह केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ यू गेट एश्योरेंस? बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा सर दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माय विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, LOP भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी भी विषयों को, सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब हम तो, मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़े विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप उस मूड में ही नहीं हैं कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूँगा जो मेरी मर्जी है। फिर गृह सचिव जी ने भी एक बात रखी कि साहब अगर आपको बैठना ही है धरने पर तो कम से कम इस जगह ना बैठिए, इससे बहुत असुविधा हो रही है जनसंधारण को। तो बोले ये भी मेरी मर्जी है। तो मुझे बड़े बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि LOP का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है, वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। लेकिन हम जानते हैं इस देश का आम इंसान, आम नागरिक इतनी समझ रखता है कि उस प्रकार की पॉलिटिकिंग में या इस तरह की राजनीतिक नौटंकी के झांसे में नहीं आने वाला। और जहां तक सरकार का ताल्लुक है, आपको स्मरण होगा आज प्रातः ही प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, की भी जा रही है, बहुत सारे लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। ये एक ऐसा विषय है जिससे लगभग देश का हर प्रदेश मुतासिर हुआ है, प्रभावित हुआ है, और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ना ही बर्दाश्त करेंगे। उसके बावजूद भी यदि विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष सहयोग करने को तैयार नहीं है तो मुझे विश्वास है देश की जनता देख रही है, जिम्मेवारी उनकी रहेगी। एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज दैट लेट दिस आफ्टरनून वी गॉट टू नो दैट द कांग्रेस पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी एंड सम अदर सीनियर लीडर्स लाइक श्री राहुल गांधी, मिसेस प्रियंका गांधी, श्री वेणुगोपाल जी एंड अदर्स हैड सडनली सैट ऑन अ धरना। सो द गवर्नमेंट found it appropriate to assign me and along with me the Union Home Secretary to go to the spot and try to make them understand not to indulge in an activity like this, and instead they could come to the table, have a talk. When we went there, and very politely, very humbly, I tried to plead before Rahul Gandhi ji that this was not the manner in which he should be indulging, also did not behove a leader of his stature and the LOP and also a senior Congress leader. He said yes, he was ready to lift this dharna, to suspend this dharna, provided he was given an assurance that government was ready for a discussion in the parliament on the issue of NEET exam, the paper leakage, etc., etc., all those issues related to this. So I told him, I said, okay, very humbly and very honestly, I told him, just give me some time. I'll have to do a small exercise for this. So I got in touch with the top leadership of the government, and then I was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said, no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done. Now, this is not a gentlemanly behavior, because just a few minutes back, you told me that if I got the assurance from the government that they were ready for a debate in parliament on the NEET and the education-related issues, you would call off your dharna immediately. But now you're saying no. No, he said, no, it's my wish. My demands have changed now. Then I told him, I said, this doesn't behove an LOP to change stance and change goalposts.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: We are over, Jimmy.
4: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
5: आपका parcel फिर से हमारे घर पे आया है।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
9: सरसों
10: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
11: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
12: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? Silver के लिए sterling mark, gold के लिए hallmark और
13: mustard oil.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: We are over, Jimmy.
4: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर प्योर मसाला।
8: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
9: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
10: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
11: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी। Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
1: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
12: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण कर

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: We are over, Jimmy.
3: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर प्योर मसाला।
8: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क,
9: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
10: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
11: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
12: कुछ तो बात है इस दिल में।
13: Assaulting a female doctor.
14: It's an 11-year-old kid who has unfortunately lost his life due to this ghastly accident.
15: 18 maternal deaths at government hospitals across Rajasthan.
16: College for the last 10 years, the college doesn't even exist.
17: The High Court has cancelled the bail granted to Mathre.
18: I very much doubt that Ramesh Mathre is going to forget NDTV in a hurry.
19: Major embarrassment for the BMC administration. Its own general body has rejected that internal inquiry.
20: Several of these women came to these hospitals to deliver their babies. Some of them never even made it back home alive.
21: AIIMS Jodhpur also took do an investigation on it.
22: The college exists only on paper.
23: मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
8: वी आर ओवर जिमी।
9: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
10: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
11: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
12: अरे मेरे राजा,
13: सबका राजा आर प्योर मसाला।
14: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क और
15: मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
16: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
10: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
11: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
12: अरे मेरे राजा,
13: सबका राजा आर प्योर मसाला।
17: The news, Ayush. Since when do we do scripts? Fair point. Picture this. The biggest stage. Floodlights.
18: Wow.
17: 4K. The works.
18: Where's the hook?
17: There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs.
18: Where's the hook?
17: Think about this. Front page advertisements and hoardings.
18: Bro, where's the hook?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: जय हो।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: We are over, Jimmy.
4: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर प्योर मसाला।
8: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क,
9: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
10: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
11: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
12: Kuch to baat hai is dil mein.
13: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
14: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, R pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
15: Maa bhi hamesha P-Mark mustard oil mein khana banati thi.
12: Kuch to baat hai is dil mein.
11: P-Mark, the mustard specialist since 1933.

0: discussions with the Congress leaders. According to government sources, the centre conveyed its willingness to hold a discussion on the NEET issue in Parliament. After the talks failed, police then detained several Congress leaders and workers during the protest. Visuals showed Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge and other senior leaders being taken into the police custody. Addressing the media after the incident, Jitendra Singh and of course now the Congress leaders have been released. That also includes Rahul Gandhi and even Priyanka Gandhi. They both have now been released after their detention because of that unauthorized sit-in, the dharna, outside the PM's residence. Meanwhile, addressing the media after the incident, Dr. Jitendra Singh alleged that Rahul Gandhi, the LOP, had changed the terms discussed during the meeting and said such an approach was not in keeping with the democratic parliamentary practices. Okay, my colleague Divyankar is now joining me. Divyankar, at this point of time, while there is a sit-in protest at Jantar Mantar, what happened today outside the PM's residence, the Congress sit-in dharna, has somehow added a political tone and tenor to this protest, which is somehow taking away the basic demand of the protest, which is students' future and the NEET paper leak issue.
1: जी बिल्कुल, देखिए चाहे वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर सीजेपी जो है उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है, जिस तरह से नीट पेपर लीक के साथ साथ तमाम जो दूसरी परीक्षाएं हुई हैं वो पेपर उसके जो पेपर है, उसकी जो एग्ज़ाम है वो उस दौरान लीक की जो पेपर लीक है वो समस्या सामने आई, और इसी को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष जो हैं और इनके साथ तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं वो आज पीएम आवास के पास पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया, लगभग 3 से 3.5 घंटे तक वहां पर बैठकर उन्होंने प्रदर्शन किया, और जब दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें हटाने की कोशिश की गई तो उस दौरान ये भी तस्वीरें निकल कर आई कि जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं और इसके बाद तमाम जो नेता है वो वहाँ पर ज़मीन पर भी बैठ गए, तो इस दौरान झड़प वाली जो स्थिति है वो भी देखने को मिली, और इसके बाद नेताओं को हिरासत में लेकर अलग अलग जो थाने हैं वहाँ पर लाया गया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ साथ तमाम जो दूसरे नेता हैं उन्हें छत्रसाल स्टेडियम, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ मेरे ठीक पीछे, इसी स्टेडियम में लाया गया था, और लगभग 1.5 से 2 घंटे तक, यानी कि बात करें तो 6:30 बजे जब राहुल गांधी और तमाम दूसरे सांसदों को वहां से उठाया गया, तो उसके बाद तकरीबन 8 बजे के आसपास यहां पर छत्रसाल स्टेडियम सभी जो नेता हैं उन्हें हिरासत में लाकर यहां पर पहुंचे थे, और 9:30 बजे के बाद सभी नेताओं को जो कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी हों और अखिलेश यादव हों, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा जो सांसद थे उन्हें सभी छोड़ दिया गया। तो देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से विपक्ष जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग या फिर छात्रों से हित से जुड़े हुए जो मांग है उसको लेकर किस तरह से मानसून सत्र में आवाज जो है वो उठाती है।
0: जी धन्यवाद दिव्यांकर। Let's take a listen to all the political reactions coming in on what all has happened in the national capital earlier today.
2: कि मेरे भाई बहुत स्ट्रांग है, वो बर्दाश्त कर लेंगे जो भी है। छात्रों को कल जो किया वो एकदम गलत था, कि बच्चे हैं हमारे, भविष्य है हमारे, युवा हैं इस देश के, और जब हम संसद में कहते हैं कि हमें डिबेट चाहिए तो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम की इज्जत पे हम डिबेट फिर से कर रहे हैं, फिर से बिल आ रही है। तो वंदे मातरम का मतलब क्या है, मतलब क्या है, हमारी मातृभूमि क्या है, किसकी है, अगर हम अपने युवाओं को ही नहीं बचा सकते, उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते।
3: जो मांग छात्रों की है, सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए, जो उन्होंने मांग रखी है उसको स्वीकार सरकार को करना चाहिए, और सरकार ने जो अन्याय किया है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जिस तरीके से उनको पीटा गया, उनका सर फोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, करंट लगाया गया, और जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने दमन करने की कोशिश की है, लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं, क्या ये लोकतंत्र में उम्मीद कर सकता है किसी सरकार से? और जब शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन चला उस समय, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी मांगों को मान लें, सदन में यही मुद्दा उठाएंगे।
4: वी ऑल आवर लीडर ऑफ ओपोजिशन पुट फॉरवर्ड 3 डिमांड्स। 1, धर्मेंद्र प्रधान शुड रिसाइन इमीडिएटली टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दिस सीबीएसई नीट लीकेजेस। नंबर 2, द केसेस एफआईआर केसेस अगेंस्ट द स्टूडेंट्स related to the yesterday in

0: Very humbly, I try to plead before Rahul Gandhi ji that this was not the manner in which he should be indulging. Also, did not behove a leader of his stature and the LOP, and also a senior Congress leader. He said yes, he was ready to lift this dharna, to suspend this dharna, provided he was given an assurance that government was ready for a discussion in the parliament on the issue of NEET exam, the paper leakage, etc., etc., all those issues related to this. So I told him, I said, okay, very humbly and very honestly, I told him, just give me some time. I'll have to do a small exercise for this. So I got in touch with the top leadership of the government, and then I was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET, on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said, no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done. Now, this is not a gentlemanly behavior, because just a few minutes back, you told me that if I got the assurance from the government that they were ready for a debate in parliament on the NEET and the education-related issues, you would call off your dharna immediately. But now you're saying no. No, he said, no, it's my wish. My demands have changed now.
1: Rahul Gandhi ji arajakta ke pratik bankar ubhar rahe hain. Jis prakar se sansadiye jivan mein hamare kuch aise pad hote hain jo keval party vishesh ke nahi hote. Pradhanmantri keval ek party ke neta nahi hai, 140 crore deshvasiyon ke chune hue janpratinidhi hain, जिसको पूरे देश की जनता अपने आस्था और विश्वास का केंद्र मानती है. और आज उनके आवास पर जाकर जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी उनकी टीम ने किया है, वह स्पष्ट संकेत देता है कि ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति के परिचायक बनते जा रहे हैं.
2: We all our leader of opposition put forward three demands. One, Dharmendra Pradhan should resign immediately to taking the responsibility of all these CBSE NEET leakages. Number two, the cases, FIR cases against the students related to the yesterday incidents should be withdrawn immediately. Number three, there should be a concrete specific discussion on CBSE NEET exam leakage, which we are demanding yesterday.
3: जो मांग छात्रों की है, सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए. जो उन्होंने मांग रखी है, उसको स्वीकार सरकार को करना चाहिए. और सरकार ने जो अन्याय किया है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जिस तरीके से उनको पीटा गया, उनका सर फोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, करंट लगाया गया, और जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने दमन करने की कोशिश की है, लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं, क्या ये लोकतंत्र में उम्मीद कर सकता है किसी सरकार से? और जब शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन चला उस समय, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी मांगों को मान लें. सदन में यही मुद्दा उठाएंगे.
4: मेरे भाई बहुत स्ट्रांग है, वो बर्दाश्त कर लेंगे जो भी है. छात्रों को कल जो किया वो एकदम गलत था. ये बच्चे हैं हमारे, भविष्य हैं हमारे, युवा हैं इस देश के. और जब हम संसद में कहते हैं कि हमें डिबेट चाहिए, तो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम की इज्जत पे हम डिबेट फिर से कर रहे हैं, फिर से बिल आ रही है. तो वंदे मातरम का मतलब क्या है? मतलब क्या है? हमारी मातृभूमि क्या है, किसकी है, अगर हम अपने युवाओं को ही नहीं बचा सकते, उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते?
5: And meanwhile, while we're talking about the protest, let's also talk about the rift that's there between the opposition. While Aam Aadmi Party versus Congress war of words has also erupted as Congress MPs and top leaders led by Rahul Gandhi sat on dharna outside the Prime Minister's residence today, the Aam Aadmi Party has accused the Congress of

0: स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य को नुकसान ना हो, इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का, हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है।
1: Well, the BJP has posted a video of the Prime Minister stating that the PM is always working to secure the future of the country's children. Does that video?
2: ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सकें, इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूँ आपके बच्चों के भविष्य के लिए।
1: That's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.
3: The Shiv Sena Shinde faction corporator seen assaulting a female doctor.
4: The 11-year-old kid was unfortunately lost his life due to this ghastly accident.
3: 18 maternal deaths at government hospitals across Rajasthan.
5: College for the last 10 years, the college doesn't even exist.
6: The High Court has cancelled the bail granted to Mathre.
7: I very much doubt that Ramesh Mathre is going to forget NDTV in a hurry.
8: Major embarrassment for the BMC administration. Its own general body has rejected that internal inquiry.
9: Several of these women came to these hospitals to deliver their babies. Some of them never even made it back home alive.
10: AIIMS Jodhpur also took do an investigation on it.
11: The college exists only on paper.
12: मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा।
13: We are over, Jimmy.
14: Hey. लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
15: They built, they led, they redefined the business conversation. Now, India Inc.'s finest take center stage. Who will win the NDTV Profit Business Leadership Awards? 26 July. On the NDTV network.

प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं।

0: traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
1: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
2: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
3: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced action.
4: The Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
5: The thug you see is Shinde Sena co-operator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy, Ramesh Mhatre?
6: We learned that the action has been taken against the thug neta that we see on our screen.
7: Thank you for staying with NDTV. Well, in a key NDA strategy meeting this morning, the Prime Minister gave a very strong message of assurance for the students. The Prime Minister declared that there is zero tolerance towards paper leaks. He assured NDA MPs that his government is fully committed to protecting the future of India's youth by ensuring fair and transparent examinations. Now, at the NDA parliamentary Mangal Milan meeting, which is called Parliamentary Affairs Minister, Kiran Rijiju said that the Prime Minister highlighted the government's response to recent paper leak incidents, including conducting re-examinations wherever it is necessary. The Prime Minister also stressed that robust measures are being put in place to prevent such incidents in the future. And he's also called for strictest possible punishment for those who are involved with the paper leak rackets. The message from the government is clear that no compromise will be made on exam integrity or the aspirations of students. Here is what Union Minister Kiran Rijiju has to say on the matter.
8: NEET ke exam ke bare mein adarne Pradhan Mantri ji ne kaha hai ki jab paper leak ka khabar aaye turant sarkar ne karwai kiya aur 13 logo ko arrest karke jail mein dal diya gaya hai aur sath sath jo छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है जो लोग दोषी पाए गए हैं जिसको अरेस्ट किया गया है उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है पाप काम किया है उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है
7: Well, the BJP has posted a video of the Prime Minister stating that the PM is always working to secure the future of the country's children. Here's that video.
9: ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में

0: बड़े करते देख सके, इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूं आपके बच्चों के भविष्य के।
1: That's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.

0: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
1: Thank you for staying with NDTV. Well, in a key NDA strategy meeting this morning, the Prime Minister gave a very strong message of assurance for the students. The Prime Minister declared that there is zero tolerance towards paper leaks. He assured NDA MPs that his government is fully committed to protecting the future of India's youth by ensuring fair and transparent examinations. Now, at the NDA parliamentary Mangal Milan meeting, which is called Parliamentary Affairs Minister, Kiran Rijiju said that the Prime Minister highlighted the government's response to recent paper leak incidents, including conducting re-examinations wherever it is necessary. The Prime Minister also stressed that robust measures are being put in place to prevent such incidents in the future. And he's also called for strictest possible punishment for those who are involved with the paper leak rackets. The message from the government is clear that no compromise will be made on exam integrity or the aspirations of students. Here is what Union Minister Kiran Rijiju has to say on the matter.
2: NEET ke exam ke bare mein adarniya Pradhan Mantri ji ne kaha hai ki jab paper leak ka khabar aaye turant sarkar ne karwai kiya aur 13 logon ko arrest karke jail mein dal diya gaya hai aur sath sath jo छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है।
1: Well, the BJP has posted a video of the Prime Minister stating that the PM is always working to secure the future of the country's children. Here's that video.
3: ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सकें, इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूँ आपके बच्चों के भविष्य के लिए।
1: That's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.

0: जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है।
1: Well, the BJP has posted a video of the Prime Minister stating that the PM is always working to secure the future of the country's children. Here's that video.
2: ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सकें, इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूँ आपके बच्चों के भविष्य के लिए।
1: That's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.

0: राहुल गांधी उनकी टीम ने किया है वह स्पष्ट संकेत देता है कि ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति के परिचायक बनते जा रहे हैं।
1: वी ऑल आवर लीडर ऑफ ओपोजिशन पुट फॉरवर्ड थ्री डिमांड्स। वन, धर्मेंद्र प्रधान शुड रिसाइन इमीडिएटली टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दिस सीबीएसई नीट लीकेजेस। नंबर टू, केसेस एफआईआर केसेस अगेंस्ट द स्टूडेंट्स related to the yesterday incident should be withdrawn immediately. Number three, there should be a concrete specific discussion on CBSE NEET exam leakage which we are demanding yesterday.
2: जो मांग छात्रों की है, सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए। जो उन्होंने मांग रखी है उसको स्वीकार सरकार को करना चाहिए। और सरकार ने जो अन्याय किया है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जिस तरीके से उनको पीटा गया, उनका सर फोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, करंट लगाया गया, और जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने दमन करने की कोशिश की है, लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं, क्या ये लोकतंत्र में उम्मीद कर सकता है किसी सरकार से? और जब शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन चला उस समय, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी मांगों को मान लें, सदन में यही मुद्दा उठाएंगे।
3: मेरे भाई बहुत स्ट्रांग है, वो बर्दाश्त कर लेंगे जो भी है। छात्रों को कल जो किया वो एकदम गलत था। ये बच्चे हैं हमारे, भविष्य है हमारे, युवा हैं इस देश के। और जब हम संसद में कहते हैं कि हमें डिबेट चाहिए तो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम की इज्जत पे हम डिबेट फिर से कर रहे हैं, फिर से बिल आ रही है। तो वंदे मातरम का मतलब क्या है? मतलब क्या है? हमारी मातृभूमि क्या है, किसकी है? अगर हम अपने युवाओं को ही नहीं बचा सकते, उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते।
4: And meanwhile, while we're talking about the protest, let's also talk about the rift that's there between the opposition. While Aam Aadmi Party versus Congress war of words has also erupted as Congress MPs and top leaders led by Rahul Gandhi sat on dharna outside the Prime Minister's residence today, the Aam Aadmi Party has accused the Congress of trying to steal the spotlight from the CGP protest. It was former Delhi Chief Minister Atishi who hit out asking how was Congress even allowed to congregate near the Prime Minister's house when CGP was not even allowed to march to the Parliament. Now, Aam Aadmi Party is saying that the Congress and the BJP are the ones who are actually one unit. Reactions coming in on that.
5: प्रधानमंत्री जब तक ना चाहे वहां तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये जो इन छोटे छोटे गरीब बच्चों का प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है, जो 2.5 लाख बच्चे कल जंतर मंतर और नई दिल्ली के अंदर आए थे और उन्होंने डंडे खाए थे, उन बच्चों के प्रोटेस्ट को डिसक्रेडिट करने के लिए और उनके क्रेडिट को चुराने के लिए कांग्रेस के प्रोटेस्ट को वहां पे सजाया गया प्रधानमंत्री के घर के बाहर। यहां एक महीना हो गया, कोई एक अफसर नहीं आया। एक घंटे के अंदर दो दो मंत्री राहुल गांधी से मिलने पहुंच गए, दो दो सेक्रेटरी पहुंच गए। भैया जुगलबंदी क्या है? इनसे कह रहे थे तुम्हें प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं मिली, तुम कैसे बैठ गए? तुम्हें परमिशन कैसे मिल गई भाई? तुम तो प्रधानमंत्री के घर पर ही बैठ गए। इसके बारे में कांग्रेसी क्या कहेंगे बताएं।
6: संजय सिंह ने अभी ट्वीट किया है, कौन बीजेपी को धरने को कमजोर करने के लिए सीजेपी के,
7: कौन संजय सिंह?
6: आम आदमी पार्टी के।
7: अरे छोड़ो यार, किसी सीरियस आदमी का सवाल।
4: All right, we are getting in a breaking news that's coming in. It is the Education Minister, Dharmendra Pradhan, who has issued a statement on the ongoing protest that happened today by the opposition party outside the Prime Minister's residence. He says, and I quote, that the Congress party continues to, quote unquote, shamelessly exploit students as political tools to manufacture the disruption during the monsoon session of the parliament. Dharmendra Pradhan has gone on to say that it is Rahul Gandhi and the Congress who are choosing to stage a dharna outside the Prime Minister's residence, causing inconvenience to the public and disregarding established security protocols. Even after the government is ready for a comprehensive discussion, the Congress, he says, always chose political spectacle over democratic debate, and that the objective was never solutions for students, and it was always disruption for political headlines. So a scathing attack coming in there from the Education Minister Dharmendra Pradhan. He has spoken nothing yet on the student protest that happened yesterday. He has spoken today on what happened.

0: Raju said that the Prime Minister highlighted the government's response to recent paper leak incidents, including conducting re-examinations wherever it is necessary. The Prime Minister also stressed that robust measures are being put in place to prevent such incidents in the future. And he's also called for strictest possible punishment for those who are involved with the paper leak rackets. The message from the government is clear that no compromise will be made on exam integrity or the aspirations of students. Here is what Union Minister Kiran Rijiju has to say on the matter.
1: NEET के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है जो लोग दोषी पाए गए हैं जिसको अरेस्ट किया गया है उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है पाप काम किया है उनको सजा देने के सब एकजुट होना चाहिए ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है
0: Well, the BJP has posted a video of the Prime Minister stating that the PM is always working to secure the future of the country's children. Here's that video.
2: ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सके इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूं आपके बच्चों के भविष्य के लिए
0: That's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.